खुद ही ऐसी अवस्था दे देते हैं कि इसमें हमको बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और वह खुद ही आंसर दे देते हैं। डीएनए को हम अब तक जीन्स, हेरिडिटी और हमारे शरीर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से जोड़कर देखते आए हैं। वहीं डीएनए अब गणित करने वाले मॉलिकुलर कंप्यूटर का हिस्सा बन रहा है। विज्ञान की खूबसूरती यही तो है, जिस चीज़ को हम सिर्फ जीवन में पहचान समझते थे, वैज्ञानिक उसी में कंप्यूटरिंग की एक नई संभावना खोज रहे हैं। और यही तो विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम असंभव चीज़ों को भी संभव कर सकते हैं, और वही किसी खोज की शुरुआत बन जाती है। दोस्तों, अब इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ आपकी दोस्त राजश्री शर्मा और आप सुन रहे थे युववाणी। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए युववाणी और यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

0: उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने

सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर के इंद्र से लिखे जाएंगे। 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ग्राम भारती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:00। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुन पाएंगे चर्चा, सरसों में वैज्ञानिक विधि अपनाएं, अधिक उत्पादन पाएं। साथ ही किसान भाइयों को एक भेंटवार्ता भी सुनवाई जाएगी, सरसों की उन्नत खेती। सुनीता वर्मा कृषि पर्यवेक्षक अकबरपुर से भेंटवार्ता। जानकारी दिलवाई जाएगी सरसों के प्रमुख कीट रोग समन्वित प्रबंधन। साथ ही साथ किसान भाइयों को मौसम और बाजार भाव भी बताया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:30। लोक संगीत होगा 8:15। रात्रि 9:45 हिंदी में व 9:00 अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:15 पर। 10:00 जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाइलाइट्स कैप्सूल दिल्ली केंद्र से लिखा जाएगा। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:20 पर। 11:00 हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

कल की सभा में सवेरे 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से ले किए जाएंगे। 6:05 पर वंदनवार कार्यक्रम रिले किया जाएगा। झरू का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 6:30 पर। 6:35 पर रामचरित मानस कार्यक्रम विविध भारती से रिले किया जाएगा। संगीत सरिता कार्यक्रम होगा सवेरे 6:45 पर। सवेरे 7 बजे नमस्कार अलवर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सवेरे 7:30। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सवेरे 8:15 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 8:30 पर बातें फिल्मों की कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कल के कार्यक्रम में आप सुनेंगे खनकते संगीत और थिरकते नृत्य से सजे समूह गीत। स्वर और आलेख अर्चना जैन का रहेगा। प्रस्तुत करता होंगे शिव कुमार शर्मा। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सवेरे 9 बजे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। 9:45 पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय बघिर सप्ताह के संबंध में राजकीय चिकित्सालय अलवर के नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश तिवाड़ी का संदेश।
1: आदरणीय श्रोतागण, मैं डॉक्टर राकेश तिवाड़ी, वरिष्ठ विशेषज्ञ कान नाक गला कैंसर, राजीव गांधी अस्पताल अलवर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।

0: कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे आसपास की सारी आवाजें अचानक शांत हो जाएं तो हमारा संसार कैसा लगेगा? लेकिन बधिर व्यक्ति के लिए जीवन केवल खामोशी का नाम नहीं है, उनका भी अपना संसार है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी भावनाएं, अपने सपने हैं, अपनी पहचान है। इसी भावना के साथ आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के बारे में। हर वर्ष सितंबर के अंतिम सप्ताह में दुनिया भर में इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह सप्ताह 21 से 27 सितंबर तक मनाया जा रहा है और इसकी वैश्विक थीम है डिक्लेयरिंग डेफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स, अर्थात बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा। यह वर्ष इसलिए भी विशेष है क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी कि WFD की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस सप्ताह की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज भी समाज में बधिरता को अक्सर केवल सुनने की कमी के रूप में देखा जाता है, जबकि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को उसकी कमी से नहीं उसके अवसरों से पहचानें। यह सप्ताह हमें यह समझने का अवसर देता है कि बधिर होना किसी व्यक्ति की क्षमता की सीमा नहीं, अक्सर हमारा ध्यान उनके सुनने की कठिनाइयों पर जाता है, लेकिन वास्तविक चुनौती कई बार व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज की सोच, संचार के साधनों और उपलब्ध अवसरों की कमी में होती। बधिर समुदाय की अपनी एक समृद्ध भाषा और संस्कृति है, सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज। यह केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति, पहचान और संवाद का एक सशक्त माध्यम है। जिस तरह हर बोली जाने वाली भाषा का अपना व्याकरण और सौंदर्य होता है, ठीक उसी तरह सांकेतिक भाषा की भी अपनी संरचना और गहराई है, बस जरूरत है इसे समझने और अपनाने की। इसीलिए बधिर समुदाय का एक महत्वपूर्ण संदेश है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, अर्थात हमारे बारे में होने वाले फैसलों में हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। यह संदेश हमें सिखाता है कि नीतियां बनाते समय और योजनाएं तैयार करते समय बधिर समुदाय की आवाज को सुनना, उसे शामिल करना कितना आवश्यक है। आज तकनीक ने भी इस दिशा में बहुत मदद की है। हियरिंग एड्स, कॉकलियर इम्प्लांट्स, रियल टाइम कैप्शन, मोबाइल एप्लीकेशंस जैसी सुविधाओं ने बधिर व्यक्तियों के जीवन को और सुगम बनाया है। लेकिन तकनीक के साथ साथ समाज की सोच में बदलाव भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सच्चा समावेश केवल साधनों से नहीं दृष्टिकोण से आता है। परिवार और समुदाय की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि घर में ही किसी बधिर बच्चे या सदस्य को अपनापन, धैर्य और सहयोग मिले तो वह आत्मविश्वास के साथ शिक्षा से लेकर करियर तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या सामाजिक जीवन, हर बधिर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। एक समावेशी समाज वही है जहां हमें केवल उनकी कठिनाइयों को देखने की बजाय उनकी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचाने, जहां संवाद के लिए दीवारें नहीं बल्कि रास्ते बनाए जाएं। इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम सांकेतिक भाषा का सम्मान करेंगे, बधिर व्यक्तियों के साथ सहजता से संवाद करने का प्रयास करेंगे और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा समाज में समान अवसर दिलाने में अपना योगदान दें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, सुनने की क्षमता भले ही प्रकृति की देन हो, पर समझने की, अपनाने की और साथ देने की क्षमता पूरी तरह हमारे हाथ में है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर आवाज, चाहे वह शब्द में हो चाहे इशारों में, सुनी जाए, समझी जाए और उसका सम्मान किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।
1: अभी आप अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के संबंध में राजकीय चिकित्सालय अलवर के नाक कान गले के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश तिवाड़ी जी का संदेश सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लिखे जाएंगे।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का संकल्प सभी के योगदान और भागीदारी से ही साकार हो सकता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विकास योजनाओं

0: अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर निर्वाचित हुए और अनंत चतुर्दशी पर्व पर प्रदेश भर में शोभा यात्राएं और गणपति विसर्जन के कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का संकल्प सभी के योगदान और भागीदारी से ही साकार हो सकता है। श्री मोदी ने आज सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की राह में कई चुनौतियां हैं, इसके लिए हमें हर दिन नई ऊर्जा और सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण का काम करना होगा।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा,

विकास तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता सहित 22 विभागों से जुड़ी सेवाएं दी जाएंगी। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलों में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से आंगन मिलन सेवा की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से पोषण स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। इसके तहत आज आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। वहीं सेवा के रंग राष्ट्र के संग कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर आकर्षक और संदेश परक रंगोलियां बनाई जा रही हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने गए हैं। जयपुर में सुनील कोठारी, जोधपुर में प्रसन्न चंद मेहता और कोटा में अनुसुईया गोस्वामी को मेयर निर्वाचित किया गया है। आज हुई मतगणना में तीनों ही नगर निगमों में भाजपा प्रत्याशियों को पार्टी के निर्वाचित पार्षदों की संख्या से ज्यादा वोट मिले। इन तीनों निगमों के महापौर चुनाव के नतीजे आने के साथ ही प्रदेश के कुल 10 नगर निगमों में से 9 पर भाजपा के मेयर बने हैं। केवल बीकानेर में ही कांग्रेस का महापौर बना है। अनुसुईया गोस्वामी कोटा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी है। वहीं सुकेत नगर पालिका में भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा अध्यक्ष चुने

0: अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि वे जयपुर के विकास के लिए पूरे प्रयास करेंगे।
1: मैं सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ जयपुर की जनता ने हमें अपना मताधिकार दिया है, विश्वास दिया है, हम सभी लोग 150 सांसद और मैं स्वयं और सभी 150 पार्षद हम इस जयपुर शहर की बेहतरी के लिए, विकास के लिए और गौरव के लिए और जो विश्वास उन्होंने दिया है उसे पूरा करने के लिए कार्य करेंगे।
0: जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में कल उप महापौर के चुनाव होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इस साल अप्रैल महीने में लाए गए नए नियमों को लागू करने के लिए प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। ये समिति जिला स्तर तक इन नियमों की पालना की निगरानी करेगी। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भुवनेश माथुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए नियमों में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। श्री माथुर ने बताया कि राज्य में हर दिन करीब 900 टन ठोस कचरा निकलता है। इसमें से लगभग 500 टन कचरा लैंडफिल साइट पर पहुंचता है। इससे कई तरह का प्रदूषण फैलने की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के अनुसार गीले सूखे कचरे और अन्य अपशिष्ट को अलग अलग करना अनिवार्य होगा।
2: एग्रीगेशन को तो खैर बहुत फोकस किया गया है, जैसे पहले खाली गीले और सूखे में होता था, अब चार तरीके से उसके अंदर होगा। और जो एक आम जन की शिकायत थी कि हम कचरे को सेग्रीगेट भी कर देते हैं पर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे वो मिक्स कर दिया जाता है, उसको एड्रेस करने के लिए इसके अंदर प्रावधान है कि पूरा का पूरे की एक ट्रैकिंग सिस्टम बनेगी जो कि कचरा लेने से लेकर डिस्पोजल तक उसकी मॉनिटरिंग होगी। प्लस इसके अंदर और भी कुछ छोटी चीजें और भी हैं, जैसा आरडीएफ है उसको बढ़ावा देना, यानी कि हमारे इसका पूरा फोकस ही ये है, मॉनिटरिंग इसके मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, इसको रिसाइकलिंग और रिसोर्स रिकवरी को प्रमोट करना और लैंडफिल को मिनिमम करना।
0: स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। आज ये अभियान शौचालय निर्माण से आगे बढ़कर कचरा प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन और जनभागीदारी से जुड़ा व्यापक स्वच्छता अभियान बन चुका है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2017 में शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सामूहिक स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रमदान, युवाओं की भागीदारी और सफाई मित्रों के कल्याण को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। वर्ष 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इसी साल सितंबर महीने तक देश में 5,59,000 से अधिक गाँव ODF प्लस हो चुके हैं। साथ 5,38,000 से ज्यादा गांवों में ठोस और 5,65,000 से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। वहीं शहरी क्षेत्रों के 95,478 वार्डों में घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: अनंत चतुर्दशी पर्व पर आज गणपति विसर्जन के कार्यक्रम हो रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्रद्धालु तालाबों, नहरों और अन्य जलाशयों में गणेश प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन कर रहे हैं। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेशोत्सव का धूमधाम से समापन हो रहा है। समूचे माहौल में गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बांसवाड़ा के डायलाब तालाब पर भक्तों भीड़ उमड़ी और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। डूंगरपुर की गेप सागर की पाल पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उधर सवाई माधोपुर में भी अनंत चतुर्दशी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
4: इस शोभा यात्रा में अखाड़ों के कर्तव्यबाज, विभिन्न झांकियां, डीजे, ढोल, भजन मंडलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर भर में विभिन्न संगठनों की ओर से तोरण द्वार बनाए गए हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयघोष के साथ लोगों में भारी उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई यह शोभा यात्रा देर शाम कालीसिल नदी पहुंचेगी, जहां विघ्न विनायक को विदा किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक

0: साधारण सभा की बैठक आज आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए बैंक अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी ने कहा कि आरबीआई द्वारा बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद बैंक लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वर्तमान समय के प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश को देखते हुए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का संकल्प सभी के योगदान और भागीदारी से ही साकार हो सकता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विकास योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर निर्वाचित हुए और अनंत चतुर्दशी पर्व पर प्रदेश भर में शोभा यात्राएं और गणपति विसर्जन के कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांकी बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव, धार्मिक आयोजन और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियां हुई। जिले के 6 नगरीय निकायों करौली, हिंडौन, मंडरायल, टोड़ा भीम, सपोटरा और सूरौठ में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। चुनाव परिणामों में हिंडौन, सपोटरा और सूरौठ में भाजपा के प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। करौली और मंडरायल में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि टोड़ा भीम नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। करौली नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव में कांग्रेस के सुनील सैनी ने भाजपा के वीरेंद्र शर्मा को 5 मतों से हराया। सुनील सैनी को 30 और वीरेंद्र शर्मा को 25 वोट मिले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हल्की बूंदाबांदी के बीच भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अन्य कार्यक्रम हुए। गणेश चतुर्थी का पर्व भी जिला मुख्यालय पर धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। करौली शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश गेट और हिंडौन दरवाजा सहित प्रमुख स्थानों पर सजावट की गई और झांकियां लगाई गई। शाम के समय इन स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जिले में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ लोग विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले में 10 दिन से चल रहा गणेशोत्सव आज संपन्न हो गया। लोग गाजे बाजे के साथ गणपति प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गई हैं। शोभा यात्राओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कार्यशालाओं और विभिन्न संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। मशीनरी और औजारों की पूजा कर कार्यक्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व पर चर्चा की गई। हिंडौन ब्लॉक के बाजना कला गांव की शीला देवी ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय जानकारी देने का काम कर रही हैं। राजीविका से जुड़ी शीला देवी वित्तीय साक्षरता CRP के रूप में महिलाओं और परिवारों को बचत बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बीमा और सरकारी वित्तीय योजनाओं की जानकारी देते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद प्रशिक्षण लेकर उन्होंने गांव-गांव में वित्तीय जागरूकता पहुंचाने का काम शुरू किया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत वजीरपुर गेट स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में CMHO डॉक्टर सतीश चंद मीना ने बालिकाओं को दवा खिलाकर की। अभियान के लिए विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों के बीच समन्वय किया गया। जिले में 10 सितंबर से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह शुरू हुआ। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस माह के दौरान जागरूकता सत्र, संगोष्ठी, रैली, पोस्टर प्रतियोगिता और नारा लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में 17 सितंबर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, युवा समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी की जा रही है। अभियान के तहत रक्तदान, मेरे सपनों का भारत, चित्रकला और सेवा की कहानी सहित विभिन्न

0: गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हिंडौन सिटी के KIHC निजी माल टर्मिनल को गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल में बदला जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी हुई है। इस जिले के व्यापारियों और उद्योगों को रेल के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों तक माल भेजने की सुविधा मिलेगी। कुंदलक और मॉडलगढ़ के बाद ये कोटा रेल मंडल का तीसरा गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल होगा। विश्व ओजोन दिवस पर करौली में जागरूकता रैली और जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। ज्योतिबा फुले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर ओजोन परत के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण का संदेश दिया। इस अवसर पर जागरूकता कार्यशाला भी आयोजित हुई। करौली जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, विकसित भारत रो संकल्प सगणा रा योगदान और भागीदारी हुई साचो वे सके है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, विकास री योजनावां रो फायदो हर एक जना ताई पुगावन माए जनता रा नुमाइंदा रो खास काम बतायो। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम माए भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुनी चिया और अनंत चौदस रे मौके राज्य माए शोभा यात्रावां निकाली ची और गणपति विसर्जन रा कार्यक्रम राखी चिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। रब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि विकसित भारत रो संकल्प सगणा रा योगदान और भागीदारी हुई साचो वे सके है। वे आज सेवा संकल्प अभियान रा तहत उत्तर प्रदेश रा वाराणसी गुजरात रा बड़नगर जा रहा सेवा यात्रियां सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत कर रहा है। प्रधानमंत्री कहो के खुद रे पान उबो भारत बनावन रा गेला माए कई चुनौतियां हैं, जाऊं पार पावन सारू रोजिना नुवी ऊर्जा और सेवा भाव सागे काम करनू फैला।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके वहां का न्यू बताई चिया सेवा, संतुलन, संयम और समन्वय समेत सात सूत्रों रो जिक्र की नो। वे आ सूत्रों ने सेवा यात्रा री आत्मा बताया। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य नितिन नवीन कहो है कि हमारी पार्टी अंत्योदय री भावना सागे गांवा और कस्बां ताई विकास री योजनावां पुगा रही है। वे आज जयपुर के न दादिया गांव माए राखी जी सेवा संकल्प सभा माए बोल रहा है। श्री नवीन कहो कि विकास से जुड़ी योजनावां रो फायदो हर एक जना ताई पुगावण माए जनता रा नुमाइंदा रो खास काम है।
3: हम सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ खड़े बैठे हैं, हम सबको ये ध्यान में रखना है कि हमारे कार्य शैली से, हमारी कार्य पद्धति से और हमारे विचार से जनता का जुड़ाव हो। हम जनता की समस्याओं के साथ हर दिन हर पल खड़े नजर आए, तभी हमारी सार्थकता है। मैं आज उस भावना के साथ, उस सिद्धांत कि समाज में जो गरीब व्यक्ति है वो नारायण है और हमें उनकी पूजा करनी है, हम सामाजिक और मानव धर्म के सेवा के लिए आए हैं, इस बात के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि विधानसभा चुनाव रे दौरान जारी करी जिया संकल्प पत्र रा 78% काम राज्य री मौजूदा सरकार 2.5 साल रा कामकाज में ही पूरा करती ना है। वह कहो कि नौजवाना, महिलावां, गरीबा और किसाना रा भला सारू तेजी काम करियो चाह रियो है। ये मौका केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ समेत के विधायक अर्जुन सारा नुमाइंदा मौजूद हा। इन कार्यक्रम पाछे भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर रा बिड़ला सभागार माए नौजवाना सागे बातचीत कीनी।

0: ई दौरान वे कहो के जीवन माए सफलता रो कोई शॉर्टकट नहीं वे है। प्रदेश माए विकसित भारत जन सेवा अभियान रा तेत काल नु 28 सितंबर ताई सेवा सेतु अभियान शिविर लगाया जावेला। सगला जिला रा गिरदावर सर्किला और ग्राम पंचायता माए लागन वाला आ शिविरा रे जरिए खेतीबाड़ी, बिजली, महिला और बाल विकास और सामाजिक न्याय और अधिकारिता समेत 22 महकमों जुड़ी सेवावा दी जावेला। इबीजे प्रदेश रा सगड़ा आंगनबाड़ी केंद्रा मत है आज आंगन मिलन सेवा शुरू हुई। इरे जरिए पोषण और स्वास्थ्य जुड़ी योजनावा री जानकारी जनता ताई पुगाई जावेला। इना तेत आज आंगनबाड़ी केंद्रा मत न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जा। इस आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों रो मान करी जियो। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम माए भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुनी चिया है। जयपुर माए सुनील कोठारी, जोधपुर माए प्रसन्न चंद मेहता और कोटा माए अनुसुईया गोस्वामी मेयर चुनी चिया है। आ तीन ही नगर निगम माए भाजपा रा उम्मीदवार ने पार्टी रा चुनी जिया पार्षदां री तादाद उं 32 वोट मिलिया। ए तीन ही नतीजा आया पाछे अब प्रदेश रा कुल 10 नगर निगम मायूं 9 माए भाजपा रा जदके केवल बीकानेर नगर निगम माए कांग्रेस रा महापौर चुनी चिया है। अनुसुईया गोस्वामी कोटा नगर निगम री पहली महिला मेयर बनी है। जयपुर रा मेयर सुनील कोठारी खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान शहर ने साफ और बेहतर बनावण माथे खास ध्यान देवण री बात कही।
1: मैं सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ जयपुर की जनता ने हमें अपना मताधिकार दिया है, विश्वास दिया है, हम सभी लोग और मैं स्वयं और सभी 150 पार्षद हम इस जयपुर शहर की बेहतरी के लिए, विकास के लिए और गौरव के लिए और जो विश्वास उन्होंने दिया है उसको पूरा करने के लिए कार्य करेंगे।
0: सुकेत नगर पालिका माए भाजपा रा जितेंद्र चौपड़ा अध्यक्ष चुनी चिया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम माए काल उप महापौर ओहदा सारू चुनाव फैला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्र सरकार का न्यू ठोस कचरा रा प्रबंधन सारू ई साल अप्रैल महीना माए लाई चिया नुआ नियमा न लागू करण सारू प्रदेश माए तेज यूं काम करियो जा रियो है। इंसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए समिति बनाई ची है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल रा अतिरिक्त मुख्य अभियंता भुवनेश माथुर आज जयपुर माए खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि राज्य माए रोजिना करीब 900 टन ठोस कचरो निकले है, जिनमायों करीब 500 टन कचरो लैंडफिल साइट माथे पुगे है। वे बतायो कि नुआ नियमा रा मुजब गीला, सूखा और दूजा कचरा न न्यारो करनो जरूरी वेला।
2: एग्रीगेशन को तो खैर बहुत फोकस किया गया है, जैसे पहले खाली गीला और सूखे में होता था, अब चार तरीके से उसके अंदर होगा। और जो एक आम जन की शिकायत थी कि हम कचरे को सेग्रीगेट भी कर देते हैं पर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे वो मिक्स कर दिया जाता है, उसको एड्रेस करने के लिए इसके अंदर प्रावधान है कि पूरा का पूरे की एक ट्रैकिंग सिस्टम बनेगी जो कि कचरा लेने से लेकर डिस्पोजल तक उसकी मॉनिटरिंग होगी। प्लस इसके अंदर और भी कुछ छोटी चीजें और भी हैं, जैसे आरडीएफ है उसको बढ़ावा देना, यानी कि हमारे इसका पूरा फोकस ही ये है मॉनिटरिंग, इसके मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, इसको रिसाइकलिंग और रिसोर्स रिकवरी को प्रमोट करना और लैंडफिल को मिनिमम करना।
0: स्वच्छ भारत मिशन साल 2014 में चलाई चियो हो। ओ मिशन आज शौचालय बनावण आगे निकल और कचरा प्रबंधन व्यवहार माए बदलाव और जनतारी भागीदारी जुड़ियो मोटो सफाई अभियान बन गयो है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2017 में शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सामूहिक स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रमदान, युवाओं की भागीदारी और सफाई मित्रों के कल्याण को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। वर्ष 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। इसी साल सितंबर महीने तक देश में 5,59,000 से अधिक गाँव ODF प्लस हो चुके हैं। साथ ही 5,38,000 से ज्यादा गांवों में ठोस और 5,65,000 से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। वहीं शहरी क्षेत्रों के 95,478 वार्डो में घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।

0: आज अनंत चौदस रे मौके गणपति विसर्जन रा कार्यक्रम रखा जा रहा है और न्यारी न्यारी थोड़ा शोभा यात्रावां निकाली जा रही है। जात्रु तलावां नहरां और पानी रा दूजा स्रोतां माए गणेश जी री मूर्तियां विधि विधान बोलाई। इस आगे 10 दिन रो गणेशोत्सव धूमधाम पूरो फेरियो है। बांसवाड़ा रा डायलाब तलाव माथे मोटी तादाद माए जात्रुआं री मौजूदगी माए भजन कीर्तन रा आयोजन राखी जिया। डूंगरपुर माए गेप सागर री पाल माथे राखी जिया कार्यक्रम माए मोकला जात्रु पूग्या। सवाई माधोपुर माए अनंत चौदस पारंपरिक श्रद्धा भाव सागे मनाई जा रही है। माणा खबर नवीस बतायो के रामेश्वर धाम रात्रिवेणी संगम माथे जात्रुआं रो तांतो लग्योड़ो है। वठे निकाली जा रही शोभा यात्रावां माए मोटी तादाद माए जात्रु मौजूद रहा।
1: इस शोभा यात्रा में अखाड़ों के करतबबाज, विभिन्न झांकियां, डीजे, ढोल, भजन मंडलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर भर में विभिन्न संगठनों की ओर से तोरण द्वार बनाए गए हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष के साथ लोगों में भारी उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई यह शोभा यात्रा देर शाम कालीसिल नदी पहुंचेगी, जहां विघ्न विनायक को विदा किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: भीलवाड़ा जिला रा गावाई हलका माए गणेश चौथ हो शुरू हो गरबा महोत्सव आज अनंत चौदस रे मौके पूरो फेरियो है। जैसलमेर माए हिंगलाज महोत्सव मनायो जा रियो है। हिंगलाज माता री पूजा ने समर्पित ओ महोत्सव काल शोभा यात्रा सागे शुरू हो। महोत्सव रे दौरान न्यारा न्यारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलना नी होड़ा रखी जा रही है। अरब मौसम, प्रदेश में चौमासा री बिरखा लगभग बंद वेवण सा गई, गर्मी रो असर बतक्यो है। बाड़मेर और जैसलमेर में दिन रे बगत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर में पारो 40 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करियो जा रियो है। कई ठोणा रात रे बगत ही तापमान में बढ़ोतरी परेशानी वेवण लगी है। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन गर्मी रो असर रेवण रा आसार है। 27 सितंबर सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा और भरतपुर समेत राज्य रा उगनी हल्का माए कठे कठे आंधी बारिश री संभावना है। जापान माए चाल रहा एशियाई खेलना री 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम होड़ माए आज भारत सोना रो तमगो हासिल कीनो। कमलजीत और सुरुचि इंदर सिंह री ई उपलब्धि सा गई भारत सोनारा 2, चांदीरा 8 और कांसारा 9 तमगा सा गए कुल 19 तमगा जीत लीना है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े सोनारो तमगो जीतन माथे एयर पिस्टल मिश्रित टीम रा खिलाड़िया ने बधाई दीनी है। आखिर में खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, विकसित भारत रो संकल्प सगणा रा योगदान और भागीदारी उई सांचो भे सके है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, विकास री योजना वारो फायदो हर एक जना ताई पूगावन माए जनता रा नुमाइंदा रो खास काम बतायो। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम माए भारतीय जनता पार्टी रा महापौर चुनी चिया। और अनंत चौदस रे मौके राज्य माए शोभा यात्रावां निकाली ची और गणपति विसर्जन रा कार्यक्रम राखी चिया। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को खूबी बहन की घनी घनी राम राम साहब, और आपको आज के अनंत चतुर्दशी त्यौहार की भी अनंत शुभकामनाएं।

ईश्वर आपकी ज़िंदगी में अनंत खुशियाँ लाए, अनंत सफलताएँ लाए और आपको अनंत ही उन्नतियाँ प्रदान करें। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम जो है उसे शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे सरसों में वैज्ञानिक विधि के बारे में और भेंटवार्ता भी सुनाएंगे आपको सरसों की उन्नत खेती के बारे में। इसी के साथ साथ जानकारी देंगे सरसों के प्रमुख कीट रोग समन्वित प्रबंधन के बारे में। तो कुल मिलाकर आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो सरसों की खेती को ही समर्पित है। सबसे पहले बात करते हैं सरसों में वैज्ञानिक विधियां किस तरह से हमारे किसान भाई अपनाकर अपना अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है भूमि की तैयारी की, तो यह फसल समतल और अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट से दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है। यह भूमि गहरी और इसमें जल धारण करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए जमीन का पीएच मान 7 होना चाहिए। ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय मिट्टी होने पर इसकी खेती अच्छी नहीं हो पाती। हालांकि क्षारीय मिट्टी में उपयुक्त किस्म की जो खेती है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मिट्टी लवणीय होती है यानी खार ज़्यादा होती है वहाँ पर खेत में पानी भरकर बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे कि जो नमक है या लवण वाला जो पानी है वो पानी के साथ घुलकर बाहर निकल जाएगा। अगर पानी के निकास का समुचित प्रबंध नहीं है तो प्रत्येक वर्ष लाह लेने से पूर्व ढेंचा को हरी खाद के रूप में उगाना चाहिए। जहाँ की जमीन क्षारीय है वहाँ प्रति तीसरे वर्ष जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम की आवश्यकता मिट्टी के पीएच मान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन यह ध्यान रखें कि इसके लिए जो पीएच मान है यानी सरसों की खेती के लिए पीएच मान मिट्टी का 7 होना चाहिए। अब बात कर लें इसकी उन्नत किस्मों के बारे में, तो सरसों की किस्मों की प्रमुख रूप से अगेती, सामान्य, समय और देर से बुवाई वाली सिंचित बारानी और लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों में पैदावार के लिए अलग अलग तरह की इसकी उन्नत किस्में पाई जाती हैं, जिनको हमारे किसान भाई अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसके हिसाब से उनको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। मिश्रित खेती में बारानी चने के साथ साथ मिश्रित खेती कर सकते हैं इसकी। इसमें फसल को पाला नहीं मारता, कीटनाशक छिड़काव भी आसानी से किया जा सकता है। यदि हमारे किसान भाई सरसों और चने की मिश्रित खेती करना चाहते हैं तो अंधे फसल 7:3 को रखें, यानी कि 7 पंक्तियाँ जब सरसों की लगाएँ तो उसके बाद 3 पंक्तियाँ उसमें चने की लगा दें। बात कर लें बुवाई की उचित समय, बीज और मात्रा की, तो बुवाई में देरी होने से उपज और तेल की मात्रा दोनों में कमी आ जाती है। बुवाई का जो उचित समय है वो सितंबर के मध्य से लेकर अक्टूबर अंत तक का होता है। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के समय दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः औसतन 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 3 से 5 किलो पर्याप्त रहती है। बीजोपचार हमारे किसान भाई ज़रूर करें। बीजोपचार से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो यहीं पे बीज में बीजोपचार करने से ही ख़त्म हो जाती हैं। बीजोपचार के लिए कार्बन डांसिम 2 ग्राम या फिर पूर्व में सफ़ेद रोली रोग यदि आया हो तो एप्रॉन 35 ST 6 ग्राम कवकनाशक दवाई प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मृदा जनित रोगों से बचने के लिए 10 ग्राम ट्राइक्रोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से भी बीजोपचारों को हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अब बात कर लें उर्वरक की, तो उर्वरक का संतुलित उपयोग करने के लिए नियमित रूप से मिट्टी का परीक्षण ज़रूरी होता है। फसल में खाद की मात्रा निर्धारित करने से पहले मिट्टी का परीक्षण करना आवश्यक है। सरसों की फसल नाइट्रोजन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में भी काम में नहीं लेना चाहिए और आवश्यकता से कम मात्रा में भी इसे काम में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए जो आदर्श मात्रा है वो 1 हेक्टेयर में असिंचित फसल को 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश और सल्फर की आवश्यकता होती है। और जहाँ पर सिंचाई की पूरी सुविधाएँ हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध होती हैं वहाँ पर 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 से 40 किलोग्राम पोटाश व सल्फर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति अमोनियम सल्फेट द्वारा करना ज़्यादा लाभदायक रहता है क्योंकि इसमें गंधक भी उपलब्ध रहता है। सिंचित स्थितियों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस, पोटाश व सल्फर की पूरी मात्रा को बुवाई के समय बीज से कम 5 सेंटीमीटर नीचे

0: बुवाई करनी चाहिए और शेष आधी नाइट्रोजन को पहली सिंचाई करने के बाद खेत में जब पैर चिपचिपाते हों तब बिखेरना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी हमने बात करी कुछ वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में जिसके सहायता से हमारे किसान भाई सरसों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता सरसों की उन्नत खेती। जानकारी दे रही हैं सुनीता वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक अकबरपुर।
1: किसान भाइयों, राम राम। देखो, अब आने वाला समय रबी की फसल में जो अपने नकदी फसल के रूप में मानी जाती है, सरसों की अलवर और इसके आसपास में सरसों की बहुत अच्छी पैदावार किसान भाइयों को मिलती है। तो इसकी अच्छी खेती किसान भाई कैसे लें जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिल सके, इनकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ हैं सुनीता वर्मा जी। आप कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत अकबरपुर में कार्यरत हैं, पंचायत समिति उमरैन से। तो इनसे जानते हैं इनके अनुभव और कैसे किसान भाइयों को सरसों खेती करनी चाहिए जिससे उनको ज़्यादा उत्पादन मिल सके। नमस्कार जी।
2: नमस्कार किसान।
1: देखो सुनीता जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि सरसों की खेती बहुत ही नकदी फसल के रूप में मानी जाती है, तो इसकी में ऐसी किसान भाई सावधानी रखें जिससे उनको उत्पादन भी अच्छा मिले और साथ में कोई दिक्कत भी नहीं आए, तो उसके लिए क्या कुछ किसान भाई करें, जैसे जमीन की तैयारी है, कैसे क्लाइमेट चाहिए इसको सरसों की फसल के लिए।
2: सरसों की फसल की अगर हम बात करें तो जैसे इस समय अब रबी फसलों की अगर बात करें तो सरसों की बुआई के लिए किसान भाइयों को अभी से जैसे खेत की तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सरसों के लिए जैसे अगर हम बात करें इसकी तैयारी की, तो अच्छे से जैसे मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को तैयार करके उसके बाद जैसे हैरो चला करके या जो कल्टीवेटर है उससे उसकी जुताई करके पाटा लगा करके खेतों को तैयार करना अब शुरू कर देना चाहिए
1: जी। तो अंतिम जुताई में क्या उनको कुछ दवा या कुछ रासायनिक खाद ये भी डालने की आवश्यकता होती है?
2: खाद उर्वरकों की हम बात करें सरसों की फसल में, तो जैसे इसकी जुताई होती है उसमें जैसे 8 से 10 टन गोबर की खाद है सड़ी हुई अच्छी या कंपोस्ट खाद है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको देना चाहिए, जिससे कि उसमें जो भी खाद उर्वरक की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सके। तो इसमें जैसे 3 से 4 सप्ताह पूर्व जब फसल बोनी होती है उसके 3 से 4 सप्ताह पहले इसमें खाद दे देना चाहिए, गोबर की खाद सड़ी हुई, और उसके बाद जुताई करके उसको खेत को तैयार करना चाहिए।
1: तो इसमें क्या जब अपने किसान भाई बुआई करें तो बुआई के लिए कौन सा तरीका अच्छा रहता है, जैसे सीड ड्रिल द्वारा या छिटकाव विधि से?
2: बुआई की विधि की अगर हम बात करें सरसों की, तो जैसे इसमें पंक्ति में बुआई करनी चाहिए, बुआई मशीन से ही करनी चाहिए हमेशा, उससे जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी उचित रहती है और जो कतार से कतार की दूरी है वो भी सही रहती है, जिससे पैदावार काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उसमें पौधों को काफी स्पेस मिल जाता है तो वो पोषक तत्वों का अच्छी।
1: तो प्रति हेक्टेयर कितनी इसमें बीज दर की आवश्यकता होती है?
2: इसमें 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज काम में लेता है किसान और लेना भी चाहिए, और बीज को हमेशा उपचारित करके बोना चाहिए
1: जी। उपचारित की आपने जो बताई, तो उपचारित किससे करना चाहिए?
2: इसमें जैसे बीज को राइजोबियम कल्चर से है, फंजीसाइड से है, इंसेक्टिसाइड से है, जिसमें इसमें उपचारित करने का जैसे होता है FIR यानी पहले फफूंदनाशी से आपको उसको उपचारित करना चाहिए, फिर इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए, और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित करके बोना चाहिए
1: जी। अगर किस्मों की बात की जाए तो अलवर और इसके आसपास ज़्यादा उत्पादन देने वाली और वातावरण को सहन करने वाली, जैसे सर्दी को सहन करने वाली, सर्दी में भी ज़्यादा नुकसान फसल को ना हो, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख किस्में?
2: सरसों की हम अगर किस्मों की बात करें तो जैसे पूसा जय किसान है, ये सफ़ेद रोली, उकटा और तुलसीता जो रोग होता है उससे रोगरोधी किस्म है, और ये जो है सिंचित और असिंचित जो बारानी क्षेत्र है उन दोनों के लिए ही उपयुक्त किस्म मानी जाती है। दूसरी जो है RS30 है, पूसा बोल्ड है, गिरिराज वेराइटी है जो सेवर भरतपुर से निकली हुई वेराइटी है, काफ़ी अच्छी वेराइटी है, RS 725 है, काफ़ी पैदावार देती है। इसके अलावा जैसे लक्ष्मी है, क्रांति है, इसके अलावा जैसे अगर देरी से बुआई करना चाहते हैं तो आशीर्वाद है, जैसे देरी से बुआई करने के लिए ये सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
1: तो इनके समय की अगर बात करें, बुआई का उपयुक्त समय कौन सा माना गया है?
2: सरसों की बुआई की अगर समय की बात करें तो इसमें जैसे अगर बारानी क्षेत्रों में सरसों की बुआई कर रहे हैं किसान तो ये 25 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक मानी जाती है, लेकिन अगर सिंचित क्षेत्रों में सरसों की बुआई कर रहे हैं तो उसकी जो बुआई का उपयुक्त समय है वो 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक किसान इसकी बुआई कर सकते हैं
1: जी। जी, जैसे अपन फसल की बुआई करते हैं, सिंचाई की कब आवश्यकता होती है? अगर बरसात हो जाए तो कितनी सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है?
2: सरसों की

0: असल में अगर हम सिंचाई की बात करें तो जैसे इसमें सिंचाई दो या तीन तीन सिंचाई किसान अगर करता है तो अच्छी पैदावार मिलती है, लेकिन फिर भी अगर पानी की कम उपलब्धता है तो दो सिंचाई तो किसान करना चाहिए। पहली सिंचाई जो है वो 40 से 45 दिन पे करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई जैसे इसमें 70 से 80 दिन पे किसान को करनी चाहिए।
1: तो उसमें सिंचाई के साथ क्या, जैसे रासायनिक उर्वरक होते हैं, यूरिया का छिड़काव किसान भाई करते हैं तो क्या उपयुक्त रहता है छिड़काव?
0: खाद की हम बात करें तो जैसे तिलहनी फसल है तो इसमें तेल की मात्रा के लिए उसके लिए ज़रूरी होता है फास्फोरस, सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है वो उर्वरक किसान को उड़ के देना चाहिए। 3 बैग प्रति हेक्टेयर सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बैग यूरिया का किसान को इसके साथ में देना चाहिए, जिससे सरसों की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाती है। तो उसके बाद में तो यूरिया की मात्रा जो आधी मात्रा है वो दे सकता है किसान पहली सिंचाई के साथ।
1: जी हाँ, तो जो आपने बताया सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों को आवश्यक रूप से बुआई से पूर्व काम में लेना चाहिए, जिससे इसमें तेल की मात्रा बढ़े।
0: जी सिंगल सुपर फास्फेट किसान को सरसों की फसल में या कोई भी तिलहनी फसल है तो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहिए किसान को।
1: जी
0: इसमें सल्फर होता है, इसके अलावा फास्फोरस भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसलिए किसानों से मैं यही आग्रह करूंगी कि वो सरसों की फसल में सिंगल सुपर फास्फेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें।
1: जी इसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे सरसों की फसल में अपन सिंचाई कर देते हैं, बरसात हो जाती है, निकाई गुड़ाई घास फूस ज़्यादा इकट्ठा खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ निकाई गुड़ाई करनी चाहिए?
0: सरसों की फसल में अगर हम बात करें खरपतवारों की, तो जैसे इसमें प्याजी वगैरह है, मोरवा है, चील है, तो इनसे क्या होता है फसल की पैदावार में काफ़ी हद तक नुकसान देखा जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैसे फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो पहले निराई गुड़ाई करनी चाहिए, वो भी श्रमिक द्वारा, और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा 50 दिन के बाद में भी इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए।
1: इसके अलावा जो पैदावार को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं सरसों, उसमें कीट और बीमारियों का प्रमुख स्थान रहता है। अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक किया, सब अच्छी तरह से खाद भी उसमें अपने डाले, अच्छी जुताई बुआई करके अपने बुआई कर दी, अच्छी किस्म की अपने बुआई कर दी, लेकिन उसमें कोई कीट या बीमारी फसल में आ गई तो उत्पादन होते होते रह जाता है, आधा रह जाता है या बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो इसमें प्रमुख रूप से कौन से कीट बीमारी लगने का संभावना रहती है और क्या उनका किसान भाई उपचार कर सकते हैं?
0: सरसों की फसल में अगर हम कीटों की बात करें तो जैसे इसमें एक पेंटेड बग और एक आरा मक्खी जैसे लगती है, तो इसमें क्या होता है कि ये 7 से 10 दिन की जब फसल होती है उस समय ये फसल पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए जैसे मिथाइल पैराथियन जो डस्ट आती है, चून आता है, 2% चून, वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बुरखाव कर देना चाहिए। दूसरे अगर हम कीट की बात करें,
1: ये जो अभी आप मक्खी बताइए, ये कितने दिन की फसल जब हो जाती है जब ज़्यादा प्रभावित होती है?
0: ये जब फसल अंकुरित होती है उस समय 7 से 10 दिन की अवस्था में ज्यादा नुकसान।
1: हाँ, तो उस समय किसान भाइयों के दवा का छिड़काव कर देना चाहिए?
0: उसी समय किसान को इस मिथाइल पैराथियन पाउडर का जो है बुरकाव कर देना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें जैसे मोइला है, वो भी इस फसल में जैसे फूल आती है उस समय, जैसे मौसम में अगर बदलाव होता है, जैसे अगर मौसम में नमी है या बादल होते हैं उस कंडीशन में ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये कीट जो होता है वो हरे काले और पीले रंग का होता है, और ये क्या करता है कि जो पौधे की जो पत्तियां होती है, शाखाएं होती है, फूलों और फलियों का क्या रस चूस करके उनको नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, ये दवा जो है 500 ml, या मिथाइल पैराथियन जो है 50 cc, ये 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके 1 सप्ताह के अंतराल पर इसके 2 स्प्रे कर देने चाहिए।
1: जी
0: इसके अलावा जैसे हम बात करें दीमक, तो दीमक भी जैसे इसमें फसल में नुकसान पहुंचाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए जैसे किसान अंतिम जुताई करता है उस समय इसमें क्लोरपाइरीफॉस जो 4% है या फिर क्विनोलफॉस है 1.5% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको देना चाहिए, भूमि में मिला देना चाहिए। और अगर इसके बाद भी अगर खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो जो क्लोरपाइरीफॉस दवा आती है उसकी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ में देना चाहिए। रोगों की अगर हम बात करें इसके, तो जैसे इसमें सफ़ेद रोली का प्रभाव देखा जाता है, तो इस रोग के कारण क्या होता है जो पत्तियां होती है, तने, पुष्प और फलियां होती है उन पर सफ़ेद फफोले हो जाते हैं, और इस रोग से प्रभावित जो पौधे हैं उनमें क्या है ना तो फलियां बनती है और ना ही बीज बनते हैं।
1: जी
0: इस रोग की रोकथाम के लिए कहता है मेटालेक्जिल नाम की एक दवा आती है 8% या जो मेनकोजेब होती है, ये 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका बुरकाव कर देना।
1: फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए।
0: हाँ इसके अलावा जैसे सरसों में अगर रोगों की बात करें तो छाछा रोग लगता है, इस रोग के कारण

0: क्या होता है कि जो पूरा पौधा है उसमें सफेद पाउडर जैसा पदार्थ ढक जाता है, पत्तियों को ढक लेता है, पत्ती की जो पौधे की पत्तियां हैं वो झड़ जाती है और जो फलियां बनती है उनके अंदर जो दाने हैं वो सिकुड़े हुए बनते हैं। इसके नियंत्रण की हम बात करें तो जैसे केराथेन नाम की एक दवा आती है, वो 1 किलो या 20 किलो गंधक का पाउडर जो है प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बुरकाव करना चाहिए। एक हम अगर इसके रोग की बात करें तो इसमें तुलसीता नाम का भी रोग लगता है। इस रोग के कारण क्या होता है, जो पत्तियां हैं उनके नीचे जो सफ़ेद फफूंद जो है वो रुई के समान दिखाई देने लगती है और पत्तियों के ऊपर हल्के भूरे बादामी रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो मेटालेक्जिल 8% जो दवा आती है उसके साथ में मेनकोजेब 2.5 ग्राम दोनों को मिला करके प्रति लीटर में घोल बना करके उसका छिड़काव कर देना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए केराथेन की 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी आप दवा काम में ले सकते हो, तो इससे आपको काफी हद तक इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा।
1: जी, ये तो देखो आपने कीट और बीमारी और उनके नियंत्रण के बारे में अपने किसान भाइयों को बताया। साथ में अगर बात करें तो इसमें जैसे पकने की अवस्था कौन सी ठीक है, जैसे किसान भाई कटाई करें, कई बार क्या होता है देरी से कटाई करने पर दाने छिटक जाते हैं, फलियां खुल जाती हैं, और कितनी उपज अमूमन इसकी सरसों की किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है?
0: सरसों की फसल की अगर हम कटाई की बात करें तो जैसे इसमें अगर ज़्यादा लेट अगर इसकी कटाई करते हैं तो जो फलियाँ होती है वो चटकने की आशंका रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ तो किस्में ऐसी होती है जो इस चीज़ के प्रति रोधी होती है लेकिन कुछ वेराइटी ऐसी होती है जो इसमें ज़्यादा मतलब इसका प्रभाव रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही पौधे पीले पड़ने लग जाएं और जो फलियाँ जो है वो भूरे रंग की होने लग जाए तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए, और कटाई करने के बाद में उनको सुखा करके थ्रेसर से इनको दानों को अलग कर लेना चाहिए और इसको किसान अपने मार्केट में इसका बिक्री कर सकता है।
1: जी, उपज की बात की जाए तो उपज अमूमन कितनी प्रति हेक्टेयर बैठ जाती है?
0: अगर मैं सरसों की उपज की बात करें तो इसमें जैसे सरसों की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाने की उपज प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा जैसे इसमें सरसों की फसल में कोई विशेष ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, लगभग 1 हेक्टेयर में 25,000 का खर्चा आता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा किसान को फायदा मिलता है। और
1: जी, सुनीता जी, आप चलते चलते किसान भाई को कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिससे वो ज्यादा पैदावार ले सकें।
0: मैं किसानों से यही कहूंगी कि वो भूमि उपचार करें, भूमि उपचार करने के बाद में बीज को उपचारित करें, अच्छे बीज का सिलेक्शन करें, अच्छी किस्मों का चयन करें और उनको फिर FIR विधि जो है उससे उपचारित करके फिर बोना चाहिए, ताकि जो बीमारियां बाद में फसल में आने वाली होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और किसान आर्थिक नुकसान से बच सकता है, और उसके बाद में उसको समय पे सारी चीज़ें से निराई गुड़ाई है, फसल में खाद वगैरह है या पानी देना है, उसका समय पे अच्छी तरीके से ध्यान रखे और अच्छी पैदावार प्राप्त करें।
1: जी, सुनीता जी, बहुत अच्छी जानकारी अपने किसान भाइयों को आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: तो जानकारी के बाद अब आपका थोड़ा सा करवा देते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। तो किसान भाइयों आनंद लीजिए इस लोकगीत का।

अरे हमको अरे हमको के

पुकारो अक्षर भैंसी बराबर हमें निपट गंवार हो देवल। कारो अक्षर भैंस बराबर हमें निपट गंवार, कारो अक्षर भैंस बराबर।

जो तो कौते चिट्ठिया आवे हम पे पढ़ी न जाए हो देवल, जो तो कौते चिट्ठिया आवे हम पे पढ़ी न जाए, और काऊ पे पढ़वा में तो और काऊ पे पढ़वा में तो सवई भेद

किसान भाइयों, अभी करवाए आपका मनोरंजन, आपको सुनवाए एक प्यारा सा लोकगीत जिसके गीतकार थे रामजीत सिंह रोटवार। अब थोड़ी सी चलते चलते और सरसों के बारे में बात कर लेते हैं, सरसों के प्रमुख कीट रोगों के प्रबंधन के बारे में। सरसों का एक प्रमुख जो रोग है वो सफ़ेद रोली रोग है, और यह एक फफूंद जैसा होता है जो कि कम जब तापमान हो जाता है तब ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जब जो तापमान है वो 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और आर्द्रता मौसम में ज़्यादा हो जाती है, नवंबर दिसंबर के महीने में इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें सफ़ेद रोली रोग जो होता है, इसमें पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर कुछ उभरे हुए चमकीले सफ़ेद गोलाकार छोटे छोटे फफूले बन जाते हैं, और धीरे धीरे रोग की उग्रता बढ़ने के साथ साथ ये फफूले आपस में मिलकर अनियमित आकार का रूप बना लेते हैं। पूर्ण विकसित होने पर फफोले फट जाते हैं और सफ़ेद भूरे चून के रूप में बीजाणु धानियों पर फैल जाते हैं। तने व फलियों पर सफ़ेद फफोले दिखाई देने लगते हैं, और इसके प्रभाव से उत्पन्न आंशिक रूप से इसके जो बीज होते हैं वो नहीं बन पाते। कोमल तना और पुष्प अंग विकृत होकर स्टेज हेज जैसी फूली हुई संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। जड़ों को छोड़कर पौधे के अन्य सभी भागों पर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तने में सूजन काफ़ी लंबाई तक हो जाती है जिसके कारण पौधा झुक जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे किसान भाई समय पर सरसों को लगाएं, यानी कि अक्टूबर से पहले पहले सितंबर से अक्टूबर के बीच में सरसों का को लगा लें, जिससे रोग का प्रकोप कम हो सकता है। हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। रोग ग्रसित फसल के अवशेषों को जलाकर या जमीन में गाड़कर नष्ट कर दें। खेत के आसपास खरपतवार को नष्ट करके फसल को साफ करना चाहिए। बुवाई से पहले 2 ग्राम मैनकोजेब या 6 ग्राम एप्रॉन 35 SD दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुवाई करनी चाहिए। रोग के लक्षण दिखते ही 2 ग्राम मैनकोजेब या मेटोलैक्सिल 8%, मैनकोजेब 64% दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि सफ़ेद रोली रोग के प्रकोप से बचा जा सकता है। चलते चलते आपको आज का तापमान भी बता दें, अधिकतम 31 और न्यूनतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। इसी के साथ हमारे किसान भाइयों, मुझे विदा दीजिए। जय जवान, जय

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता ग्राम भारती कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

आंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को गुलजार ने लिखा था, संगीत आर डी बर्मन का था।

बेमिसाल फिल्म के लिए किशोर कुमार का गाया ये गीत सुनिए। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का है।

विनोद राठौड़ और साथियों को सुनिए, फिल्म है दीवाना। गीत को समीर ने लिखा है, संगीत नदीम श्रवण का है।

दीवाना फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाजी थी विनोद राठौड़ और साथियों की। गीतकार थे समीर, संगीत नदीम श्रवण का था।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए राजकुमार यादव और साथियों के गाए लोकगीत।

ਆਦਮ ਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚ।

0: हेलो
1: हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख

0: देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ਸਗੁੰਤਲਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸਗੁੰਤਲਾ।

नार हैला के गौतम की नार।

पाके चली सुरसती के रूप थी पाके चली सुरसती पिता लगा सिर तारण।

0: खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

काटे जाइए मैं के हम के।

अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे राजकुमार यादव और साथी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।

0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1,00,000

0: 70,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं, अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
2: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अंबेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल

0: खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम मैनेजर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3।

0: 1, let's start the fun.
1: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरि कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता। बहुत प्यार।

0: गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।
1: वो तो बना

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बाल सुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बाल सुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बाल सुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे।

तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बालसुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बालसुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बालसुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है। जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे, उनका ये जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एसपी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एस पी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एस पी बाल सुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एस पी बाल सुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एस पी बाल सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एस पी बाल सुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत

0: प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम

0: result of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
1: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और परवीन कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंग शा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम 4 में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
2: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दी।

0: आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और क्रिश्चाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गजत की। भारतीय जोड़ी ने एशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाई लू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Rasood, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting

0: इंडियन डू फॉर इंडिया टुडे शबाब अनवर टेल्स अस रिपोर्ट।
1: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
0: Indians were in action in Kano. Sakshi Manwal has all the details.
2: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished fifth in the men's kayak double 500 meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished third among four pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500 meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished fourth among five pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
0: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
1: भारत को तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। वैसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
0: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tejada City. Coached by Frenchman Samay Rabu, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
3: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
0: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
2: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner and they ultimately went on to win the series 2-0.
0: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
2: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेट लिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशू से आया है और 11 ब्रॉन्ज है, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
0: It's another exciting day of the Asian Games 2026 with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final.

मिले थे तुमसे न जाने कब पहली बार, यकीन यही है कि हो गया था तब भी तुमसे प्यार। दिन तेरे बिन जो बीते वो क्या खाक दिन थे, अब तुम जो मिले हो तो आया दिल को भी करार। कहता ना था मैं तुमसे कि हम पहले भी मिले हैं, न जाने कितने जन्म में, न जाने कब और कितने।

आखिर मिल ही गए दिल हमारे, तेरी नजरों में ही चांद की रंगत को निहारें। क्या जिंदगानी थी और अब क्या होने लगी है, मेरी चाहत तेरी बाहों में अब खोने लगी है। मुझको तो पहले से मोहब्बत रही तुमसे, अब थोड़ी थोड़ी तुमको भी होने लगी है।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
5: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।
1: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है।